0: राम राम सम्झियो
1: राम वालेकुम सम्झियो
0: वालेकुम सलाम। अब छोराछोरी मन पराइहाले, अब तपाईँ हामी मात्रै बाजेर के गर्ने हो र? अब मिल्नै त परेन होइन?

को बारे में उल्लेख भो श्री राधा रानी को बारे में भागवत में। अनयाराधितो नूनं भगवान हरिरीश्वर। भागवत 10 स्कंद को 30 अध्याय को 28 श्लोक खोले पढ़ु, स्पष्ट राधा शब्द से निरस्त साम्या।